0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं। 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए, जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्र अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। श्री मोदी आज 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्व

0: उपलब्धियां रही।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस दो दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
3: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है।
4: सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के बीच सुपौल जिला प्रशासन ने कहा है कि कोसी नदी के जलस्तर में सामान्य गति से वृद्धि हो रही है और कोसी बैराज पूरी तरह सुरक्षित है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिला संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को लगातार तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है।
5: IMD ने कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। आज बरगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है, जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनगोल, केवंझर, सुवर्णपुर, नुआपड़ा, बलांगीर और कलाहंडी के लिए ऑरेंज वार्निंग है। IMD ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़, जल जमाव और नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर दो ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया क्योंकि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में

0: एक ही ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत डीएसवी निपुण को शामिल करने जा रही है।
1: विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निपुण एक विशेष पोत है जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के जमीनी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिलें। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहले दिन वे अछरौनी और बामौर कला में स्वास्थ्य केंद्रों, बिजली उप स्टेशनों और एक उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 169 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अलीपुरद्वार के रहने वाले 2 लोग मोटरसाइकिल से दार्जिलिंग घूमने आए थे। रास्ते में मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उसने सड़क पर चल रहे एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चलाने वाले और स्थानीय व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112311044। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9289094044। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
3: धन्यवाद फरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, लंबे समय तक भारत को यूरेनियम देगा उज्बेकिस्तान। 2030 तक सालाना द्विपक्षीय कारोबार $5 अरब पहुंचाने का लक्ष्य। रूस को पेट्रोल निर्यात करने वाला प्रमुख देश बना भारत। जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय रिफाइनरी ने की पिछले 2 माह में रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति। भारत द्वारा नेपाल को राहत सामग्री पहुंचाने से जुड़ा समाचार दैनिक जागरण ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, नेपाल का सबसे भरोसेमंद मददगार बना भारत। 4 विमानों से 68.5 टन राहत सामग्री पहुंची। सुरंग बचाव विशेषज्ञ और फोरेंसिक टीमें भी युद्ध स्तर पर जुटी। नक्सल मुक्त बस्तर को अब हथियार और विस्फोटक डंप फ्री करने में जुटी फोर्स। नारायणपुर के जंगल में राइफल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर BGL विस्फोटक का डंप जब्त। राजस्थान पत्रिका की खबर है। देहरादून की गुनगुन ने कैंसर को हराकर सौंदर्य का ताज जीता। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता P&I इंडिया 2026 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पत्र के अनुसार 2027 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व।
0: धन्यवाद विशाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्स इन बिश्केक ऑन अ टू डे विजिट टू किर्गिस्तान टू अटेंड SCO समिट एंड मीट सेवरल SCO लीडर्स ऑन द साइडलाइंस। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन सेज India is likely to sustain economic growth rate of 7% or more in financial year 2026-27. Death toll in Nepal flash flood rises to 794, while more than 2,500 people still missing. US forces strike Iranian rocket launchers on Ladakh Island in Strait of Hormuz. Iran attacks US bases in West Asia in retaliation. And in women's cricket, India beat Thailand by 94 runs in their opening match of T20 Asia Cup 2026 in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Bishkek on a two-day visit to Kyrgyzstan. He was received at the airport by Kasymaliyev Adilbek Alishovich, the chairman of the Cabinet of Ministers. A traditional Kyrgyz dance performance was also organized to welcome him.

0: संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा और संस्कृति में बढ़ती रुचि के साथ तिरुक्कुरल के महत्व का भी जिक्र किया।
1: सैकड़ों साल पहले तमिल भाषा में एक तिरुक्कुरल जो लिखा गया है, आज भी जीवन के सब क्षेत्रों में वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला और अध्यात्म भी है, फिलोसॉफी है, व्यवहारु ज्ञान भी है। जब आप 80 साल मना रहे हैं तो क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि उज्बेक में तिरुक्कुरल का यहाँ के लैंग्वेज में अनुवाद हो? सचमुच में वो यहाँ आपके ज्ञान के अंदर संवर्धन करेगा।
0: सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का जोर भारत को वेफर निर्माण से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है।
2: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहें। X@AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
4: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप पूर्ण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्य से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
0: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए।
4: आप ऐसे समय में फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं, जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20% था। अभी 4000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित है, उनमें से 85% महिलाएं हैं।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहाँ व्यापक अवसर हैं। एक रिपोर्ट।
5: वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की

0: बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि भारत अब केवल बड़े उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार आधारित उत्पादन का वैश्विक मंच बनता जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने 3M से स्थानीयकरण बढ़ाने, अनुसंधान और विकास गतिविधियों का विस्तार करने तथा नई प्रौद्योगिकियों के विकास में अधिक निवेश करने का आग्रह किया। 3M के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन ने भारत में उपलब्ध विशाल प्रतिभा संसाधन की सराहना की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
0: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
1: इसे विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के बाद मसौदा जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश के साथ समाप्त हो रहे 30 वर्षीय गंगा पद्मा जल बंटवारे समझौते के नवीनीकरण से पहले राज्य के हितों की तरफ ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार ने नए समझौते में पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों के सहयोग से बचाव दल त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों में तलाश की जा रही है। तिब्बत में मृतकों की संख्या 16 हो गई है, जबकि 546 लोग लापता है। भारतीय बचाव दल चिली में और लांगटाक में पनबिजली संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजा राम बसनेट ने बताया कि अत्यधिक मलबे के कारण सुरंगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लगभग 21,000 सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जल ग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति ने हालात को जटिल बना दिया है। एक रिपोर्ट।
4: पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शहडोल में बाणसागर डैम में पानी बढ़ने से कुछ समय के लिए डैम के गेट खोलने पड़े। गोरगी बांध फूटने से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि तेज बहाव ने रामघाट के बड़े पुल को भी नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग ने आज रीवा, मऊगंज, मेहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज ओडिशा, छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। कल तक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का

अनुमान है। फुटबॉल में भारत की अंडर 20 टीम आज ताशकंद में एएफसी अंडर 20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत सीरिया के साथ मुकाबले से करेगी। मेजबान उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में शामिल भारतीय टीम 2006 के बाद पहली बार एएफसी अंडर 20 एशियन कप में वापसी के उद्देश्य से क्वालिफायर में उतर रही है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481 और 2371 7117। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए आईएनएस निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई। 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में एएफसी अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में सीरिया से मुकाबला करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सारे रोगों के लक्षण वही होते हैं, उसे खोज निकालने के लिए वक्त लगता है।
1: हाँ टीचर, आंटी को कफ भी ज्यादा है।
0: शायद बहुत दुर्बलता भी महसूस करती होगी, तुम उसकी मदद तो करती हो ना?
1: हाँ जी टीचर।
0: कई दिन पहले यहाँ की आंगनवाड़ी में एक आरोग्य शिविर लगी हुई थी, उस समय दमा के बारे में डॉक्टर्स बता रहे थे।
2: ಹೌದು ಟೀಚರ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ರು.
0: ನೀನು ಹೋಗಿದ್ಯಾ?
2: ಇಲ್ಲ ಟೀಚರ್.
1: ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್.
0: ಆದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ದಮಾಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಕಾಫಿ ಕುಚ್ ಜಾನ್ಕಾರಿ ಮಿಲಿ. ದಮಾಕೆ ಕಾರಣ ಲಕ್ಷಣ ಯೌಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮೇ ಸಾವಧಾನಿಯ ಐಸೆ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ವಿಷಯ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಬತಾ ರಹೆ ಥೆ.
2: ದಮಾ ಕೈಸಿ ಬಿಮಾರಿ ಹೈ ಟೀಚರ್?
0: ಬತಾತಿ ಹೂಂ. डॉक्टर्स कह रहे थे कि दमा मनोदैहिक रोग माना जाता है. प्रदूषण एक तरफ और मन पर दबाव एक तरफ, दोनों मिलकर दमा बनकर लोगों को सताते हैं.
1: हमारे गली में रहते थे ना दादाजी, वो दमा से लड़ लड़ कर मर गए
2: बेचारे.
0: उस शिविर में बताया गया कि पहले केवल प्रौढ़ आयु के पुरुष ही दमा से पीड़ित हुआ करते थे, पर आजकल हर उम्र के लोग दमा के शिकार हो रहे हैं.
1: वो क्यों टीचर?
0: योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार पेट की खराबी ही दमा का कारण है.
2: अच्छा.
0: जब भोजन अच्छी तरह पाचन नहीं होती है, वो पकवाश के रस को दूषित कर देती है, फिर श्वसन प्रणाली में बाधा डालती है.
2: ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟೀಚರ್?
0: ಆಹಾರವು ಜೀರ್ಣವಾಗದೇ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಜೀರ್ಣರಸಗಳು ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ನಂತರ ಅದು ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
1: ತಬ್ ದಮಾ ಹೋಗಿನ ಟೀಚರ್?
0: ಜೀ ಹಾ, ಜಬ್ ಸಾಂಸ್ ಲೇನಾ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಪಡ್ ಜಾಯೆ ಉಸೆ ದಮಾ ಕಹತೆ ಹೈ.
2: फिर बुखार क्यों आती है टीचर?
0: जब पेट खराब है और सांस लेना मुश्किल पड़ जाए, तब हमारा बदन दुर्बल बन जाता है. इम्यूनिटी यानी कि रोग निरोधक शक्ति कम हो जाती है, इसलिए बुखार हो जाती है.
1: हर बीमारी के लिए बुखार आती है ना टीचर?
0: हाँ, लगभग हर बीमारी के लिए. इसलिए डॉक्टर्स जांच करके रोग का पता लगाते हैं.
2: बुखार से मुझे डर है.
0: पर दमा होने के लिए कई कारण हो सकते हैं.
1: वो कौन से है टीचर?
0: माता पिता को दमा होने पर बच्चों को भी दमा होने की संभावना है.
2: बाप रे, मैं बच गई.
0: कई बार वातावरण का प्रभाव, प्रदूषण, किन्हीं चीजों से एलर्जी या कोई और रोग के कारण भी दमा हो सकती है.
1: सिटी नली इरुबावरी के आस्तमा बेगा आगत है.
0: ज्यादातर चिंता, दुख, मानसिक तनाव तथा कई औषधियों के दुष्प्रभाव से भी दमा हो सकती है.
2: फिर इसका इलाज क्या है टीचर?
0: योग और प्राणायाम करने से दमा को नियंत्रण कर सकते हैं.
1: बस
0: ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಗೊಂಡು ಈ ರೋಗವನ್ನು ಹೊರಗೆ ದೂಡುತ್ತವೆ.
2: ಯೋಗ ಔರ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹರ್ ರೋಗ ಕೆ ಲಿಯೆ ಇಲಾಜ್ ಹೈ ನಾ ಟೀಚರ್?
0: ಬಿಲ್ಕುಲ್. ಇಸ್ ಕ್ರಿಯಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅಗರ್ ಹಮ್ ರೋಜ್ 20 ಮಿನಟ್ ಖರ್ಚಾ ಕರೆ ತೋ ಜಿಂದಗಿ ಭರ್ ಕಿ ಸೆಹತ್ ಪಾ ಸಕ್ತೆ ಹೈ.
1: ಅಚ್ಚಾ, ಮೈ ಸೀಖೂಂಗಿ.
2: ಮೈ ಭಿ ಸೀಖ್ ಕರ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಕರೂಂಗಿ.
0: ಶಬಾಶ್. कहा जाता है कि सूर्य नमस्कार भी दमा को भगा सकता है.
1: सूर्य नमस्कार क्या है टीचर?
0: वो एक वैदिक क्रिया है जो व्यायाम भी है. उसे रोज निश्चित रूप में करने से हमारा तन, मन और आत्मा विकसित हो जाएगा.
2: रोग दूर रहेगा ना टीचर?
1: हम बिल्कुल स्वस्थ बन जाएंगे.
0: अगली बार जब आपके घर के आसपास कोई शिविर हो तो आप वहां जाकर जरूर सीखिए.
2: जी टीचर.
1: जी टीचर.
0: योग और प्राणायाम के अलावा कई प्राकृतिक चिकित्सा भी दमा से राहत दिला सकती है.
2: वो कौन से है टीचर?
0: भाप स्नान, गर्म पाद स्नान तथा छाती की लपेट से राहत मिल सकती है.
1: समझ में नहीं आया टीचर.
2: स्टीम बात ना टीचर?
0: हाँ, भाप स्नान से पूरे

0: बदन से पसीना निकलकर हमारे त्वचा और बदन को स्वच्छ बना देगा। इससे सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी।
1: पर घर में बाप स्नान कैसे करें टीचर?
0: सही बात है, कई आयुर्वेद केंद्र और स्पास में भाप स्नान करने की सौलभ्य मिलती है।
2: पर भाप स्नान के लिए पैसे लगेंगे ना टीचर?
0: सच्ची बात है, हर कोई चाहने से भाप स्नान नहीं ले सकता है, पर घर में गर्म पात स्नान जरूर कर सकता है।
1: उसे कैसे करते हैं टीचर?
0: एक बाल्टी भर गर्म पानी में एक कटोरी नमक और दो बूंद नीलगिरी तेल डाल के अपने पांव को उसमें रखना चाहिए। दौरे की स्थिति में गर्म पात स्नान लेने से तत्काल लाभ हो सकता है।
2: मैं अपनी पड़ोसी आंटी को बताऊंगी।
1: उन्हें सूर्य नमस्कार भी सीखकर करने को बोलो।
0: योग और प्राणायाम के बारे में जरूर बताना।
2: जी टीचर।
1: अच्छा टीचर, छाती की लपेट क्या होती है?
0: बताती हूँ। गर्म पात स्नान के लिए पानी की तैयारी करते हैं ना, ठीक उसी तरह थोड़ा ज्यादा गर्म पानी में नमक और दो बूंद नीलगिरी तेल डालकर एक तवलिया को उसमें डुबोकर गीला करके छाती पर लपेटने से तुरंत राहत मिलेगी। पर याद रखना, जैसे तवलिया से गर्मी कम होने लगे उसे उतार देना चाहिए और बदन पोंछकर सूखे कपड़े पहन लेना चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
2: अयो, इदनो ट्राई माड़ो दे बेड़ा।
0: हौदु, इदु स्वल्प कष्टदायक, आदरे ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
1: ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಟೀಚರ್?
0: ಗರಂ ಪಾತ್ ಸ್ನಾನ್ ಹೀ ಸಹಿ ಹೇ. ಅಗರ್ ರೋಗಿ ಕೋ ಕಫ್ ಕಿ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕ್ ಹೇ ತೋ ನಮಕ್ ಮಿಲೆ ಹುಯೇ ಗುನ್ಗುನೆ ಪಾನಿ ಸೆ ಕುಂಜಲ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ಇಸ್ಸೆ ಕಫ್ ನಿಕಲ್ ಕರ್ ತುರಂತ ಆರಾಮ್ ಮಿಲ್ ಜಾಯೇಗಿ. ಫಿರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಲೇ ಜಾನಾ ಚಾಹಿಯೇ.
2: दमा के रोगी क्या खा सकते हैं टीचर?
0: दमा को पाचन प्रणाली का रोग माना जाता है ना, इसलिए दमा के रोगी को ज्यादा हद तक पेट और श्वास प्रणाली को साफ रखना चाहिए।
1: तो क्या दमा के रोगी उपवास करेंगे टीचर?
0: जी हाँ, एक दो दिन उपवास पर रहकर फिर धीरे धीरे रसाहार और फलाहार में आना चाहिए। बाद में मोटे आटे की रोटी और लौकी की सब्जी लेनी चाहिए, इससे पेट साफ हो जाएगा। फिर हर रोज हल्का खाना लेना शुरू कर सकते हैं।
2: इससे जरूर फायदा होगा ना टीचर?
0: अगर डॉक्टर्स ये कह रहे हैं तो जरूर बात में दम है।
1: और क्या क्या कर सकते हैं टीचर?
0: दमा के रोगियों को सूर्यास्त से पहले खा लेनी चाहिए, हमेशा गुनगुना पानी पीना चाहिए, शहद का प्रयोग भी लाभदायक हो सकता है।
2: काफी आसान है दमा को भगाना।
0: जी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला तथा जर्दे को चूना तक मना है। तली भुनी चीजें, कॉफी, चाय सब तत्काल छोड़ देनी चाहिए, फिर दमा गायब हो जाएगी।
2: काफी जानकारी मिली टीचर।
1: और उपयोगी जानकारी भी। नमस्ते और धन्यवाद टीचर।
2: नमस्ते और धन्यवाद टीचर।
0: नमस्ते बच्चों।
3: ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ವಿಶೇಷ ಹಿಂದಿ ಪಾಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿದಿರಿ.
4: ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟವರು ರಾಧಾಪ್ರತಿ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಶ್ರೇಯಾ ಆರ್ ಹಾಗೂ ಧೃತಿ ಸಿ.

0: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
1: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए अब सुनते हैं एक और कार्यक्रम, शीर्षक है कालीबाई बंगा।
3: ये कार्यक्रम राजस्थान की वीर बालिका कालीबाई बंगा के बारे में जानकारी देते हुए उल्लेख करता है कि किस प्रकार उसने भारत के स्वाधीनता के आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाया और अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते हुए अपना जीवन भारत माता के लिए उत्सर्ग कर दिया।
4: नमस्कार साथियों।
5: मेरा भी नमस्कार।
4: साथियों, राजस्थान की भूमि रणबांकुरों की भूमि है। यहाँ की माटी ने बहुत से वीरों, वीरांगनाओं और शहीदों को जन्म दिया है। आज हम सुनने जा रहे हैं इसी राजस्थान की भूमि की एक वीर गाथा।
5: तो आइए चलते हैं सन 1947 के पहले के राजस्थान के डूंगरपुर जिले में और पलटते हैं वहाँ के समृद्ध इतिहास के गौरवशाली पन्नों को।
4: और जब उन पन्नों को हम पलटते चले जाएंगे तो हमारी उंगलियां ठहर जाएंगी बहुत से सुनहरे पन्नों के बीच एक ऐसे पन्ने पर, जिस पर लिखी है एक बालिका के रक्त रंजित जीवन उत्सर्ग और बलिदान की गौरव गाथा।
5: आप पूछेंगे कौन थी ये बालिका, क्या है इसका परिचय, ऐसा क्या किया था इसने कि आज पूरा राष्ट्र उसे सम्मान के साथ याद करता है, क्या है इसका नाम जिसकी कीर्ति में आज अरावली की पहाड़ियों में लोक गीत गूंजते हैं और कृतज्ञ राष्ट्र उसे श्रद्धा के साथ नमन करता है।
4: तो चलिए हम बताए देते हैं, वह बालिका थी कालीबाई कलसुआ, जिसकी उम्र थी 13 वर्ष। कालीबाई कलसुआ भील जनजाति की बालिका थी।
5: आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले का एक गांव है रास्तापाल। भारत की आजादी के पहले तक यहां कोई सरकारी स्कूल नहीं

0: था, लेकिन एक सामुदायिक स्कूल जरूर था जिसे स्थानीय प्रजामंडल चलाता था।
1: इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी, और इन्हीं बालिकाओं में से एक थी कालीबाई कलसुआ। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खाट, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे।
0: इसी पाठशाला में एक शिक्षक थे श्री सेंगा भाई रोत, जो पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाते थे। शिक्षक सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों के बारे में बताते थे, तो कभी उन अंग्रेजों के चाटुकार अत्याचारी सामंतों की कहानी सुनाते थे।
1: ये बात उन दिनों की है जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। आजादी की उत्कंठा सारे देश में हिलोरें ले रही थी, तो भला राजस्थान इसमें पीछे क्यों रहता? डूंगरपुर का प्रजामंडल इन पाठशालाओं की मदद से आजादी का विचार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा था। शिक्षक श्री सेंगा भाई रोत बच्चों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर रहे थे।
0: कालीबाई इन कहानियों को ध्यान से सुनती थी, सुनते सुनते उसका खून खौल उठता था। सेंगा भाई उनके लिए परम आदरणीय थे। कालीबाई अपने गुरु की परम भक्त थी। जैसा कि हमने सुना था कि इस विद्यालय का संचालन प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता था, प्रजामंडल के सदस्य नहीं चाहते थे कि इस विद्यालय में अंग्रेजों के विरुद्ध बात हो और देश प्रेम की चर्चा हो।
1: प्रजामंडल के सदस्य चाहते थे कि इस विद्यालय को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस विद्यालय में देश प्रेम की चर्चा होती थी। प्रजामंडल के लोगों ने पाठशाला बंद करवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में पाठशाला के संरक्षक नाना भाई भी उपस्थित थे। नाना भाई ने इस बैठक में प्रण किया कि मैं किसी भी हाल में अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा।
0: वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना जगे। परंतु ये बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। वो नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रचार हो।
1: नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को समझाया, और समझाने के परिणाम स्वरूप एक भी व्यक्ति ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। गाँव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो वो जागीरदार झल्ला उठा। उसने सारी घटना नमक मिर्च लगाकर सामंत को कह डाली।
0: और जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल गांव की पाठशाला बंद नहीं की गई, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने के लिए वहां आ पहुंचे।
1: वो दिन था 19 जून 1947 का। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत में गई हुई थी।
0: पाठशाला में उस समय नाना भाई और सेंगा भाई दोनों उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने नाना भाई और सेंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दे दो। इस पर सेंगा भाई ने बड़ी नम्रता के साथ कहा,
1: न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं। बच्चों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है, आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं, यह तो बच्चों के साथ अन्याय है।
0: जिला न्यायाधीश ये बात सुनकर आग बबूला हो गए और बोले,
2: तुम मुझे न्याय की सीख दे रहे हो? अपनी औकात पहले देखो। अभी बताता हूं तुमको, सिपाहियों इसे ट्रक से बांध कर घसीटो।
0: इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले,
1: साहब ये पाठशाला तो प्रजामंडल के आदेश से ही तो चल रही है, आपके आदेश से नहीं। हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे बच्चों का ही भला होगा।
0: पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर भला कैसे सहन कर पाता? वो क्रोध से आग बबूला हो गया। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े और उन्होंने नाना भाई की जमकर पिटाई की।

0: इससे वे बुरी तरह घायल हो गए और इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह देखा नहीं गया, वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे।
1: किसी तरह नाना भाई उठे और सेंगा भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की,
0: लेकिन तभी उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे।
1: उनके प्राण पखेरु उड़ गए।
0: उधर सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था।
1: धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव और आसपास के गांवों में फैल गई।
0: पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन हर कोई बेबस था, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर सेंगा भाई को बचा सके।
1: कालीबाई उस समय खेत से पशु चारा के लिए घास काटकर आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था, उसके हाथ में हसिया था।
0: जब उसने अपने गुरुजी सेंगा भाई को ट्रक द्वारा घसीटे जाते देखा तो उससे ऐसा देखा नहीं गया। उसने आओ देखा ना ताओ घास का गट्ठर वहीं जमीन पर डालकर उसने ललकार कर कहा,
1: ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहां ले जा रहे हो।
0: ये कहते हुए कालीबाई बिजली की गति से उस ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हसिये से एक झटके से काट दिया।
1: सेंगा भाई मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस सिपाहियों ने कालीबाई को उसी समय गोलियों से भून दिया।
0: उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भाग कर आई, उन पर भी निर्मम पुलिस ने लाठियां बरसाई।
1: एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ लहू से लथपथ कालीबाई।
0: थोड़ी देर में अरावली की पहाड़ियों में भील जनजाति के लोगों द्वारा शोक प्रकट करने का मारू ढोल गूंज उठा। भारी भीड़ जमा होने लगी, लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा, मरो या मारो वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। इस विकट स्थिति को समझकर कातिल वहां से भाग खड़े हुए
1: और बेहद जख्मी हालत में कालीबाई को डूंगरपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
0: लगभग 40 घंटे बेहोश रहने के बाद 20 जून 1947 को राजस्थान की इस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, लेकिन अपने गुरुजी को बचाकर उसने अपनी अखंड गुरु भक्ति का परिचय तो दिया ही,
1: साथ ही उसने जनजातीय लोगों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में आजादी की मशाल जला दी।
0: आज भी रास्तापाल गांव में कालीबाई की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है और वहीं के एक पार्क में कालीबाई की मूर्ति भी लगी हुई है।
1: राष्ट्र इस त्याग की प्रतिमूर्ति नन्ही आदिवासी वीरांगना कालीबाई को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
0: कालीबाई तुम्हें हमारा सलाम।
2: कालीबाई भारत की एक जनजातीय वीरांगना। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण जगबंधु जाना,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
0: श्रोताओ अभी आपने सुना कार्यक्रम कालीबाई बंगा।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और अब हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, क्योंकि उमंग कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, कुसुमलता, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित, 4,247 से अधिक लोग लापता। और फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के

0: प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिश्कियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादो जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक, फार्मा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और कतर के बीच लंबे समय से मजबूत साझेदारी है जिसमें ऊर्जा सहयोग एक प्रमुख आधार है। श्री पुरी ने कतर में भारत के नवनियुक्त राजदूत डॉ के शिखर रेड्डी से मुलाकात की। श्री पुरी ने पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी के बीच 20 वर्ष के एलएनजी समझौते का उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है
3: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशन हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है प्राइवेट

0: और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय देश के लोगों और उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा किए गए सुधार और अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जीडीपी वृद्धि की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री ने कहा कि इस समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि समझौते से बिहार और झारखंड के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों किसानों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। श्री शाह ने कहा कि इससे बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा झारखंड के पलामू, गढ़वा और अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारत में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
3: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50-60,000 डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
1: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच पीएम प्रगति के अंतर्गत टीबी उन्मूलन प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए अंतर मंत्रालयी समन्वय को मजबूत करने पर बल दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2013 में दिए गए निर्देश के बावजूद एसिड की आसानी से उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच आज केंद्र सरकार से पूछा है कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने। ये आकाशवाणी है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण

0: चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने तथा हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक बचाव उपकरणों की कमी के कारण खतरनाक इलाकों में बचाव अभियान विशेष रूप से कठिन हो रहा है। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बाढ़ को विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। भारत ने नेपाल में बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल तैनात किए हैं। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले दो दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई और एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Russian President Vladimir Putin in Bishkek, focusing on trade, energy and defense, says India backs every effort to end war in Ukraine. Prime Minister Modi stresses freedom of navigation and civilian protection during meeting with Iran President Masoud Pezeshkian. Prime Minister also meets Kyrgyz Republican Armenian leaders to address SCO summit tomorrow. India's GDP jumps to 7.8% in the first quarter of the current fiscal despite global headwinds. Bihar and Jharkhand reach agreement on Son River water sharing, settling long-standing dispute. Relief and rescue efforts in Nepal flash flood tragedy hit by equipment shortage as death toll crosses 900, over 4,000 remain missing. And in football, India begin campaign at under 20 Asian Cup qualifiers with 1-0 win over Syria at Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic today. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation,